0: क्या है?
1: एक दिल के लगे एक दिल से पूछी अब गम क्या है?
0: गम क्या है?
1: सावन की घटा पर साए पूछी अब गम क्या है?
0: गम क्या है?

0: मदहोश हूँ मैं और होश नहीं, अब क्या होगा
1: क्या होगा
0: कुछ तू ही बता दे जोर जबी, अब क्या होगा
1: क्या होगा
0: पहलू में रहे तुम सा हंसी, अब क्या होगा
1: क्या होगा
0: हो जाऊँ न मैं दीवाना कहीं, अब क्या होगा
1: क्या?